की पीर पछाना है, घट घट के पढ़ पढ़ की जाना। जब उदकर करा करतारा, प्रजा धरत तब देह पारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बजन सृष्ट सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कैत सदा सेव, निरंकार का चिन्हित न भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेर जिसित जकी नियत, पुज खान बहुर रज दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर एक ऐठा। सिगरी सृट दिखाय, चंपा व्याज जुगा। स्वरूप स्वयं भावे अबरछा, मेरी तुम करो सिख उबारे। सिख संगरो, दुष्ट जिते उठ पाता। सकल मलेश करो रणकाता, जे हस्त तब सरणी। परे तनके दुष्ट दुखत हुआ, मरे पुरुख जमन पाग। परे निहारे तनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याह, ताके काल निकट न आह। रचा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टारा तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्व सक न कोई। एक बार जे तुम्हें संभारा।

कोट कबिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा केते राव सज क्रोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुगिया टल सब कोई भाखत नेत सुरग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चाव पई जो इह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याल सुवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सस पचावन हाल वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लाहो लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तोंके चरण तार सुद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओ रघुबर कथा प्रसांग दोहरा साध असाद जानो नहीं बाद सुबाद विबाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाही गहे जापते तुमरे जापते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरित साहतर वेद सब

अल्लाह समर्थ स्वामी सो क्या मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सहबत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया।

से संयोग करहो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। से संयोग करहो मेरे प्यारे,

महादेव सब तो छोटे गुरु अर्जुन देव जिया दी कथा आवेगी। समय सिर हाजरियां भर के लाहा लैणा जी। होईयां बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शनी गुरु इतिहास गुरु शब्द हिरदयां विच बसाउणा। आओ दो पंगतियां पढ़

रंग हस रंग रोव चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसै केरी बाज सच्चे नाह दार वाट उपर।

0: आया बाणी उदे तो अगे दो डंडियां आईया ते फिर भगत रविदास जी दे नाम तो अगे जाके दो डंडियां आईया हन। इसका भाव है कि यह इको ही पंक्ति रूप सारी तीन भगतों के नाम गरीब नवाज जी ने लिखे हैं कि अगे इन्हों गुरमुखा प्यारिया महापुरखा की बाणी अगे आएगी। तो अगे हुण जिहड़ा अगे दोबारा आसा श्री कबीर जीओ इहदा अर्थ यह है कि हुण आसा राग दे विच भगत कबीर जी दे शब्द प्रारंभ हो जा रहे हैं। सो इस प्रकार मन दे विच साध संगत जी गल नूं दृढ़ करना भी दूसरी बार दा पावे है भी हुण कबीर जी दी बाणी सब तों पहलां चलेगी।
1: गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जीओ आया।
0: बिनवता पाठ पोला ही करना, बिनवत्ता नहीं करना।
1: कवन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखा नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही होंदे ने। ये किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी कित्थे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनों वो इस तरह बयान कर देना। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लैण वास्ते तैयार हो गया। दूजा चौला, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तो मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करदा रहा, चौला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी है तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते हंकार भी मर जाएगा, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार नहीं मरदा। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होंदी। शरीर बिरद हो जाता है, लोभ बिरद नहीं आता। लोभ सदा जवान लैंदा है, अहंकार सदा जवान रहिंदा है, विकार सदा जवान रहिंदा है, वासना सदा जवान रहिंदी है। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरद हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरद हो गया, वासना ते बिरद होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरद हो गया, हंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा देगी, अगला जन्म करा देगी। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किते आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते हैं, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नूं समझदा है कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं आउंदी। वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं, इन्हों कहिंदे ने जीवन मुक्त। हंकार पे मर गया है, तन अजे जिंदा है, इन्हों कहिंदे ने जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आउंदा है, लोभ दा बंधन आउंदा है, वासना दा बंधन आउंदा है, सब तोड़ देते हैं, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया है। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावा, इस चक्कर च ना पैना। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान हो गई। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा होंदा है। रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, अहंकार छोटा है, जवान है। अहंकार जवान हो गए, लोभ जवान हो गए, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज अहंकार की ताकत बढ़ती है, रोज रोज लोभ की ताकत बढ़ती है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा है, अहंकार बलवान होंदा है, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, कोई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, अहंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी अहंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनीतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰੀ 97% ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ ਵੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੰਡੀਏ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਉਗਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਪਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੋਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗੈਨੀ ਹੋਏ, ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ये लोभ करके नहीं आए, परोपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन दा एक बहुत छोटा जिया भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसू। बिरथा कहो कवन स्यों मन की, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन की हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है धर्म दी नहीं है, आसा पदार्थां दी है परमात्मा दी नहीं है, आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवां, कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना कितना धनवान है, बस जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वार भी गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते ने, अपनी चिंतावां ची डुबे होंगे, उन्हों का मत्था ही दसदा है, अपनिया चिंतावां ची गर्क होंगे। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, लोभ ग्रस्यो दस हो दिस धावत, आसा लाग्यो धन के, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन के, मानस जन्म अकारत खोत। एना कीमती जन, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की। हरिदा जस गाते हरी हो जा, परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा, क्यों नहीं करता। निकल जाए ना चिंतावां तो, इस बोझ तो, इस दुख तो, इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देने वास्ते ये परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जाते हैं, वरना इन्हों आन की लोड़ नहीं तो मुक्त आते हैं। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकते हैं। रविदास कहने ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं, किसी मंडल च जा सकते ने, कितने भी जा सकते, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हों को तन ते नहीं आता। तन के अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है जिन्हों इनरल बॉडी करके कहिंदे ने, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है वो होंदा है, तन नहीं होंदा। एक तरीके की हवा होंदी है। ऐ तुसी कथा सुनदे पयो, ये पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मांस दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसी सुनदे हो, दे नाल कोई पेट भर जाएगा। अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानू चलाए, किस वास्ते चलाया। कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा, लंगर चलाना पैंदा, पंगत बनाई सतगुरु ने। ये कथा कीर्तन जप तप मन दी खुराक है, तन दी नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे जे को खावे
जे को भुनचे तिसका होयो उदार, कोई खावे ते सही है, नहीं खांदे। मैं फिर अर्ज करा, मन का एक छोटा जिहा भाग किधरे पाठ दे चाहुंदा, बाकी नहीं आउंदा। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुद्वारे आउंदा, बाकी नहीं आउंदा। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जांदी नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करदी। ते जे हुण भोजन दी बुरकी तन विच गई नहीं, ते खून कित्थों बनेगी, मास कित्थों बनेगी। गुरु का शब्द मन विच गया ही नहीं, तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी, बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा। शब्द मन तक नहीं जांदा, ना जाण दा एक कारण, भोजन दी भुख तन नूं लगदी है, शब्द दी भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम दी भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वो मनुख जिन्हों नाम दी भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल मका माना, कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्हां दे उत्ते तन दा, अस्थूल तन दा बंधन नहीं होंदा। इस अस्थूल तन दी अपनी सीमा है, सूक्ष्म दी सीमा नहीं, किधरे भी जा सकदा है। इस सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां कोल होंदे, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा दे जी रहे ने, परमात्मा दे विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा, किधरे किधरे फिर

संतपणा की है। पैगंबर किसनों कहते हैं, अवतार किसनों कहते हैं, पूर्ण संत किसनों कहते हैं, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दों विच, दो बोलों विच इतना बड़ा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपणा की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नूं फकीरी कहिंदे। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनों कहते ने, संत किसनों कहते ने। उस दिन भी मैं अर्ज की थी सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारिया होया, और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मेरे तक मिथ्या श्रृंगार, ये मुर्दे नु शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनु कहते ने। इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नु कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनु फकीरी कहते ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नू तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा है, जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा, जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरश ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिआ है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ए वी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सके उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म किथे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति हुई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली दे च कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे च।
करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे होंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उदी मौत कुछ दे गई। उसकी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नूं लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कठी होंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा ये जिक्र नहीं, कदों जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसे दा मरना इतना महान आउंदा है कि कलम दे धनिया नो, दिमाग दे धनिया नो, उन्हां दे ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण आउंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गए, शरीर गया, लेकिन जीवन महान होंदा है, उन्हां दी जिंदगी कुछ दे जांदी है। तो फिर कलम दे धनी उन्हां दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे च हजारां साल उड़ीक करन तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लेंदी है जिदा जन्म भी क्रांति करता है, जिदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, तें जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनिया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो ही जुड़े हो, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासिक सबूत मिलता है, 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आती, महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज के सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। बजे होया है माता भाने जी और डांट दे लहजे आख्या, ये सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक दी गद्दी है, इसते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न की कोशिश ना करना। माता भाने जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नूं डांटदे होया, अपने बच्चे नूं डांटदे होया ऐसा आख्या जदों चढ़ रहे सन। मुस्कुरांदे हुए गुरु अमरदास जी महाराज भी आ गए। गोविंदवाल दी ये घटना, एकदम भाने जी कोलों बालक गुरु अर्जन देव जी नूं लै के सिंघासन ते बिठा दिता और उच्ची सुर दे चाख्या, दोता बाणी का बहुता, ये दोतरा है मेरा, ये बाणी दा जहाज है, हजारां साल तक दुनिया इस जहाज दे च बैठ के संसार तो पार हुंदी रहेगी। जन्म जीवन मरण तिन्ने महान किसे दे नहीं आउंदे। किसी का जन्म कोई घटनाकारी होंदा है, किसी का मरण, किसी का जीवन एक ऐसी आत्मा जिसका जीवन भी जगत नू कुछ दे रहा है, जिसके जन्म ने भी फिजा नू मुअत्तर कीता, बदलिया, क्रांति लियांदी, पर जिसकी मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नजारा पेश कीता। हुण मैं अर्ज करां, बार दी जेड़ी ताकत है, शक्ति है, इनू सता कहंदे ने, सता। इस सता कई तरह दी होंदी है,
ਇਹ ਤਾਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहिंदे 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है मैं अनुवाद कीता है टीका कीता है ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं बस मैं ते धर्म दा युद्ध करन वाला प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ये टीका कीता है अनुवाद कीता है ताकि मेरे खालसे नूं जगत नूं पुराने धर्म दा पुराने समाज दा पुराने लोकाचार दा पता होवे ज्ञान सहन सरदान दे इंद्र रोवाया पर सराम रोवे घराया। एक शब्द है गुरु नानक देव जी मां कि परसराम कौन सी इंद्र कौन सी ये जनमेजा कौन सी अजे सरोवे बिखिया खाए ऐसी दरगे मिले सजाए ये सारे कौन सन इति पुराण पढ़ने पैणगे पुराणक प्रसंग पढ़ने पैणगे जानना पैगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत दे अपने आप नूं रैबर मनन लग पए ने उहदे नाल सिख धर्म संकीर्ण होके रह गए जबकि इस तो वड्डा होर कोई विशाल धर्म नहीं सी। इहदा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे भगत ते बैठे ने बांग देण वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावां ना सतगुरु कहिंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने मैं टीका कीता है अनुवाद कीता क्यों ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी शूदर नूं नहीं ते ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी बड़ी बेखम ओ हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी किसे वक्त सी किसे वक्त सारी संस्कृत बोलदे सन समां दे नाल भाषावां बदलदियां अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया पंजाबी दे च बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए ये भी मैं अर्ज कर दें लहिंदी पंजाबी चढ़दी पंजाबी अलग अलग है। पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलदे ने साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई है बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनू चंगी तरह याद है श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास की सेवा लाई ननकाणा साहब गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब से भी उत्थों की मंग आई है टीवी से प्रोग्राम जाना है पर उर्दू दे कथा करनी है लैक्चर देना है भी तुसी तिने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना ठीक है और उस सेवा मैं खुशी नाल कबूल की मैं कहा बड़े दिन बाद सतगुरु के उस पावन स्थान के दर्शन नसीब हो गए। बड़ा भारी इकट्ठ राय बुलार दी जिहड़ी संतान भट्टी खानदान वह भी सारे बैठे सन रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी वह जिहड़ी भट्टी खानदान है राय बुलार दी होर सारे वह कहण लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले चंगा रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया मेरे कमरे चो मुसलमान वीर आ गया भी असी तो थानू हाथ जोड़ के आख्या सी अरजोई की थी सी पंजाबी च बोलो तुसी पंजाबी च नहीं बोले मैं कहता मैं पंजाबी च बोले हैं कहिंदे ये केड़ी पंजाबी है रोलें दी पंजाबी बोल ये केड़ी पंजाबी कहिंदे साढ़े पल्ले तो नहीं कुछ पिया मैं कहा ठीक है फिर मैं उर्दू च ही बोलांगा उर्दू तो तुसी समझ लेते लेंदी पंजाबी भावे लेंदी पंजाबी मैं बोल सकता उस इलाके चो आया पर हुण आया पंजा 51 साल हो गए लड़खड़ा सकता सी मैं इस करके नहीं बोलिया मैं किधर लफ्जा का बेलफ्ज मैं कर सकता और शुद्धि हो सकती है तो हुण जिहड़ी पंजाबी मैं इसे च बोलिया बोलियां तो बदलदियां भाषावां बदलदियां ने संस्कृत लोक भाषा नहीं रही थी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लोक भाषा दे ब्रिज भाषा दे हिंदी दे अनुवाद किया उन्होंने सारे सिख जगत दे बिखाद खड़ा हो गया ये गुरु गोबिंद सिंह दे बोल नहीं हो सकते। हुण कौन दसे कोका पंडित ठीक कहिंदा है जे क्रोध दे उतार चढ़ाव नूं बयान किया जा सकता है किधरे किधरे क्रोध क्रोध मनुख नूं पशु बना देंदा है

0: कर देना जी। लोभ दे उत्ते व्याख्या की जा सकती है, साहब कहिंदे ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना देंदा, कुत्ते जैसा बना देंदा। ज्यों कूकर हर काया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पाखा बख सब खाए। भयो लोभ संग होरा, लोभ मनुख नूं हलकाया कुत्ता बना देंदा है। हलका कुत्ता अपने मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा है, पागल कुत्ता। लोभ ते पागल करके रख देंदा है। सीमा तो वधे होया लोभ मनुख किसी नूं भी धोखा दे सकदा है। सीमा तो वध्या होया हंकार मनुख नूं जालम बना के रख देंदा है। और सीमा तो वध्या होया काम मनुख नूं भ्रष्ट करके दुराचारी बना देंदा है। अगर पुरुष है तो वे विचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी, गुस्ताखी मत। इसका खुलासा किया, इसकी व्याख्या की थी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच फरमान करदे ने, हे प्रभु कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत के नचैया, कहूं नरको आकारो, कहूं वेद बानी किधरे ते तू वेदां दा पाठ पिया करदा है, ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है, कहूं कोक की कहानी किधरे कोक शास्त्र पिया पढ़दा, काम सूत्र पिया पढ़दा, काम सूत्र दी विचार चल रही है, किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत, पर तू ही है हे प्रभु तू ही। कहूं बेदबानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, किधरे गौआ पे आचारदा है, श्री कृष्ण दी तरफ इशारा, द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई। कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया, कहूं सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप, इतने रूप। हुण इस सवैये मैं थानू सुणांदा जावां ते मैं सारी रात लंघ जाएगी, मुख्तसर मैं अर्ज करां, समाप्ति करां। इस सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर दे, अज तक ते आख्या गया है परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है, पर जाप साहब विच महाराज कहिंदे नमो अंधकारे नमो तुज तेजे, हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनू नमस्कार करदा, पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता, मैं इस नूं भी मत्था टेकदा नमस्कार। इतनी समदृष्टि। जद भी किसी का सुनिया होया भरोसा बनता है, तो भरोसा भावना बन जाता है, भक्ति बन जाता है, वह समदृष्ट हो जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, समदृष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट, ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट, वह वास्तविक समदृष्ट हो जाता है, सारिया नु इको जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है। इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देंदा है, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी के मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान दी शिखरता नूं छूंदी है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने अक्सर भरोसा डोल जांदा है, इस वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। अवल ते कोई विरला ही सुनदा है, स्रोता सुनना, ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया, सुनिए मनिए, नहीं ते की सुनिया, मनिया नहीं ते की सुनिया। मैं एक दफा फिर दोहरावा, खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जांदा है ओही खून बनदा है, सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है ओही मन दा हिस्सा बनदा है, वरना नहीं बनदा, नहीं बनता, वह भरोसा बन जाता है, विश्वास बन जाता है। पर यह मनुख खतरे च होगा, भरोसा डोल सकता है, विश्वास डोल सकता है। सुनता रहा मनता रहा ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨੈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮੰਨਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲਾ, ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

देव जी की अमृत दृष्टि ऐसी है वह सच्ची मुची पापियां दे गुनाह करने वाले दे पाप दो कट दिंदी है। अमै दृष्टि शुभ करे खरे अग पाप सकलमल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुर नव निद्र आओ जन्म हम आ कां दी कालक धुंदे ने। गुर नव निद्र आओ जन्म हम कालक धोवे सो कहो टल गुर सेविए एन इस सह सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। अज सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने यह बख्शिश की पहली बिरती काग बिरती दसियो ने कलर केरी छपड़ी कौवा मल मल्ला है भावें असं अखरी अर्थ शुरू अच कर दें ये भाव अर्थ ने ओ लोकां दी संगत जड़ी कलरी मिट्टी की तरह जिदे ते ना बाणी नाम सिमरन कोई भी चीज असर नहीं करती। महाराज कहिंदे ने कौवा मल मल नाहे अंदरों ते बाहरों जिहड़ा अत दा मैल है वह इस औगणा नाल भरे कोई लोकां दी कुसंगत विच मल मल के नांदा है उहनूं चंगा लगदा पिया जी। सतगुरु कहिंदे ने मन तन मैला अवगुणी मन ते तन दोनों मैले जीओ मैले बाहरों निर्मल ना पर यह बाहरों भी मैले महाराज ते बरदे मन भी मैला तन भी मैला अवगुणा नाल भरे हुए ने चिंज भरी गंदी आए जिवें कां दी चिंज मैं बेनती की गंदगी नाल भरी रहिंदी है इसे तरह इस बंदे की बिरती जिहड़ी है जबान निंदिया नाल ही भरी रहिंदी। सरवर हंस ना जाणिया इत्थे मैं अर्ज की सरवर दा अर्थ कीता गुरु संगत बाणी हंस का अर्थ किया ये जीव असल च असले दे तौर ते हंस गए ये परमात्मा दी हंस है ना जिहड़े परमात्मा दे गुण ने उही इहदे ने जिवें आपां चलो कहिंदे आ वक्ती तौर ते मैल हुंदी पर सदा जीव च मैल नहीं रहनी। हुण पाणी है उहदा जिहड़ा असल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन समुंदर दा भी ते दूजा गंदे पाणी दा असल आ भी ते उही है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जिहड़ा अज मैला होया पिया इहने सदा मैला नहीं रहना यह सुभाग है कुदरत का कि जिन्हों अत का बदबू वाला पानी कहते भी नहीं मैला हों कोई समय लिए मैला रहा है जो किरण पैंती है हवा चलती पानी चुक के लै जाती मैल थले बह जाती है। असल च जीव का असली सुभाव मैला नहीं। गुरु साहब इतने शब्द वरत रहे कि इस जीव हंस ने गुरु सरोवर नहीं जाणिया क्यों नहीं जाणिया काग कुपंखी संघ जिहड़ी संगत इहनूं मिल गई वह असल च मिल गई काले कावां दी कुपंखियां दी चंगे ओ उन्हां दा पक्ष नहीं सी साकत सों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग हे गुरमुखो परमात्मा दे प्रेम नूं भालण वालिओ प्रेम विच भिज के इस गल नूं समझो जिहड़ी कां दी बिरती है साकत दी बिरती है। गुरु साहिब अगे फिर करदे आ संत सभा जयकार कर बाणी च छे तरह की सभा आई है सिख सभा संत सभा गुरु सभा मैं सोच रहा मैं गिनती कर रहा सभा की संत सभा सिख सभा साध सभा गुरु सभा एक महाराज ने दुष्ट सभा भी कह दुष्ट सभा मिल मंत्र पुकाया यह भी सभा है ये जी संत सभा सिद्ध गोष्ठ भी आंदा है ना महाराज जी ने शब्द वरते संत सभा का उत्थे इत्थे गुरु साहब जी कहिंदे आ कि संत सभा का अर्थ करिए सत संगत का इकट्ठ गुरु संगत का इकट्ठ जयकार कर जयकार अर्थ उच्ची सारी बोल सिबत कर एदा अर्थ हो गया तू सत संगत विच गुरमुखां कोल गुरु कोल उत्थे जा ते उस संगत विच उच्ची उच्ची रब दी सिबत कर संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ जो गुरु ने शब्द वरत्या है गुरमुखां वाले कर्म कर ओ कर्म कर। गुरु साहिब कहिंदे निर्मल नामन नानका इस च तेरा कलर केरी छपड़ी वाला जिहड़ा पाप धुप जाएगा ये फिर तू ना कां रहेगा ना बगला रहेगा क्या हंस क्या बगला महाराज ने शब्द वरते है ओ परमात्मा जाको नदर करे ज्योतिष भावै नानका कागू हंस करे।

पर संतन की, संतन की तुरे मिनन गरीबी पाई। नौ नित नहम गरीबी पाई, सिखा सवेरे जप करने राती सौन लगे गरीबी मंगी। अंतर यमी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे, नानक दास है सुख मंगे मोको कर संतन की तुरे। महाराज जपन वाले दी चरण तोड़ बख्शो, ये निम्रता है, ये गरीबी है। इतिहास में चाहे दो सके प्यो ते पुत नू हकूमत गिरफ्तार कर लेंदी है, शर्त को रखी है वे सिखी छड़ दियो। शाहबाज सिंह ते भाई सुबेग सिंह थोड़े दिन कष्ट रखे, भुखे रखे, प्यासे रखे, फिर साथ संगत एक दिन प्यो दे कोल जाके काजी कहिंदा है तेरा पुत डोलन वास्ते तैयार हो गया। भाई सुवेग सिंह तेरी दृढ़ता ने कुछ नहीं करना, तेरा पुत्र शाहबाज सिंह डर गया, डोलन दे किनारे च पहुंच गया, ओदी दृढ़ता टुट गई है। कल बस ऐलान होना बाकी है, तेरा पुत्र सिखी छड़न लई तैयार हो गया, तेरी दृढ़ता का कोई फायदा नहीं होना। सत संगत जे प्यो दे रहिंदे पुत डोल जाए तो फिर दोष तो प्यो नू जांदा है ना, गलती पुत कर दे ते नाम ते प्यो दा लैंदे ने लोग, विफलाने दा पुत है। काजी ने कहा तेरी दृढ़ता का कोई फायदा नहीं, सुबेग सिंह तेरा पुत्र डोल चले, ओए उन्हें ईन मनन लई तैयार हो गया, बस कल ऐलान होना बाकी है। वह सिखी छड़ के सलाम धारण कर लगे, तू की चाहना है? उनके काजी साहब मेरी कोई इच्छा है, मैनू जो मर्जी सजा दे दो, बंद बंद कट दो, खोपर ला दो, मैं सिखी नहीं छड़ांगा, पर मेरी एक शर्त है, एक अर्ज है, मैनू एक बार मैनू अपने पुत नाल मिला दो, क्योंकि दोनों नू अलग अलग रखे पे पुत नू, एक बार मैनू मेरे पुत्र नाल मिला दो। काजी ने कहा ठीक है, उन्हें बादशाह नाल गल की कि जी शायद प्यो पुत सलाह करके दोवें मुसलमान हो जाए, एक बार मिलाना चाहिए। असी सुबेग सिंह ना पुत तां डरा लिया, वह तो छड़न ते तैयार हो गया, हो सकता प्यो भी नाल मन जाए, आपां लालच भी दिता है, खबरिया दोवें मन जाण, दोवां प्यो पुत्रां नूं इकट्ठा कर दिता। हुण सुणियो सास

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया है। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया है। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया है, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਗੋਬਰ ਪੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਥਾਰ
0: ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਕਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿ ਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਸਾਜਿ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਕਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤ ਹੰਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਵਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਤਿ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਹੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਜ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਕਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਟ ਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੇ ਵਿਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ
0: ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ
1: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ सत एक नहार,
0: नाम सत सत त्यावन हार,
1: आप सत सत सब धारी,
0: आपे गुणकारी,
1: शब्द सत सत प्रभक्ता,
0: सुरत सत सत जस सुनता,
1: भुजन हार को सत सब होए,
0: नानक सत सत प्रभ सोए,
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया,
0: नानक रावण तिन मूल पछाने,
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया,
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया,
1: भय ते निरपो होए बसाना,
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना,
1: बस माही ले बस गडाई,
0: ताको भिन्न न कहना जाई,
1: भूजै भूजन हार विवेक,
0: नारायण मिले नानक एक,
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत,
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत,
1: ठाकुर को सेवक जाने संग,
0: आपका सेवक नाम कै रंग,
1: सेवक को प्रभ पालन हारा,
0: सेवक की रख है निरंकारा,
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै,
0: नानक सो सेवक सास सास समारै,
1: अपने जान का पर्दा ढकै,
0: अपने सेवक की सर पर रखै,
1: अपने दास को देव डाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपत रखै,
0: ताकि कदमित कोई न लखै,
1: आपके सेवक को न पहुँचै,
0: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया,
1: नीकी कीरी मह कर रखै,
0: भस्म करै लस कर कोट लाख,
1: जिसका शासन काटते आप,
0: ताको राखत दे कर हाथ,
1: मानस जतन करत बहु भांत,
0: जिसके कर्तव प्रथे जात,
1: मारै न रखै हवर न कोई,
0: सर्व जियां का रखा सोए,
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी,
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी,
1: बारंबार बार प्रभु जपी है,
0: नियम प्रति मन तन तरपी है,
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया,
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया,
1: नाम धन नामो रूप रंग,
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ताने,
0: मंतन नाम में नाम समाने,
1: उठ बैठ सोवत नाम,
0: कहो नानक जन कै सद काम,
1: बोलो जस जीवा दिन रात,
0: रबे अपने जन की नींदात,
1: करे भक्त आत्म कह चाई,
0: रबे अपने से रहे समाई,
1: जो हो वाह हो वत सो जाने,
0: रबे अपने का हुक्म पछाने,
1: इसकी महिमा कौन बखानो,
0: इसका गुण क्या एक न जानो,
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे,
0: कहो नानक से जन पूरे,
1: मन मेरे तिन की ओट ले,
0: मंतन अपना तिन जन दे,
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता,
0: सो जन सर्व थोक का दाता,
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे,
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे,
1: अवर सियानक सगली छाड,
0: जन की तू सेवा लाग,
1: आप न जान न हो भी तेरा,
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा,
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाम,
0: तिसके संग सिखी उदर है, नानक हर गुण गा अष्टपदी,
1: सतगुर से की करे प्रतपाल,
0: सेवक गुर सदा दयाल,
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरै,
0: गुर बचनी हर नाम उचरे,
1: सतगुर सिख के बंधन काटे,
0: गुर का सिख बकार के हटे,
1: सतगुर सिख को नाम धन दे,
0: गुर का सिख बड़ भागी है,
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार,
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार,
1: गुर के गृह सेवक जो रह,
0: गुर की आज्ञा मन में सह,
1: आप उसको कर कष न जनावे,
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे,
1: मन बेचै सतगुर के पास,
0: सेवक के कार्य रास,
1: सेवा करत होए निकामी,
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी,
1: अपनी कृपा जिस आप करे,
0: नानक सो सेवक गुर की मतले,
1: इस विश्व गुर का मन मान,
0: सो सेवक परमेश्वर की गति जाने,
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ,
0: नानक बार गुर को बल जाओ,
1: सर्व निधान जी का दाता,
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता,
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म,
0: एक आप नहीं कश भरम,
1: सह सियान पुले आन जाइए,
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई,
1: सफल दर्शन देखत पुनीत,
0: दर्शत चरणगत निर्मल रीत,
1: भेटत संग राम गुण रवे,
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे,
1: सुनकर बचन करन आगाने,
0: मन संतोखा कंपति आने,
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र,
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत,
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए,
0: नानक जिस भाव तिस लय मिलाए,
1: वाहे कुसत अनेक,
0: सतपुरख पूर्ण विवेक,
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी,
0: अगम गोचर प्रभ निरबानी,
1: निराहार निर्वैर सुखदाई,
0: ताकि कीमत किने न पाई,
1: अनक भक्त बंदन रित करहे,
0: चरण कमल हृदय सिमरै,
1: सद बलहारी सतगुर अपने,
0: नानक जिस प्रसाद सा प्रभु जपने,
1: इहो हर रस पावे जन कोए,
0: अमृत पीवे अमर सो होए,
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश,
0: जाके मन प्रगटे गुणदास,
1: आठ पैर हर का नाम ले,
0: सच उपदेशे वको दे,
1: वो माया के संग न लेप,
0: मन में रखे हर हर एक,
1: अंधकार दीपक प्रगासे,
0: नानक भरम बहु दुख ते नासे,
1: संत माही ठांड वरताई,
0: अंत भया दुख नाठे भाई,
1: जन्म मरण के मिठे अंदेसे,
0: साधु के पूर्ण उपदेशे,
1: हो चुका निरपो होए बसै,
0: सगल व्याध मन ते कह नसे,
1: जिसका साधन कृपा धारी,
0: साध संग जप नाम मुरारी,
1: चित पाई चुके भ्रम गमन,
0: सो नानक हर हर दस सरवण,
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही,
0: कला धार जन सगली मोही,
1: अपने चरित प्रभ आप बनाए,
0: अपनी कीमत आपे पाए,
1: हर बिन दूजा नाही कोई,
0: सर्व निरंतर एको सोए,
1: ओत पोत रविया रूप रंग,
0: भय प्रकाश साध का संग,
1: राज रचना अपनी कल धारी,
0: नानक बार नानक बलहारी,
1: श्लोक साथ न चालै बिन भजन, बिखिया सगली शार,
0: हर हर नाम कमावना, नानके हो तन सार, अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप सब मीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं और तारो,
1: कर्म कान सो प्राप समर्थ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर बथ,
1: केहु तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते अवैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: और बिन से पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: ना नकाटी जम फासी,
1: मत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होई उदार,
0: हर हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मर वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भक्त बिना भव डूबे सियाने,
1: भक्त की भगत करहु मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पाव है सस्तना,
1: हर पूंजी संच करहो व्यवहार,
0: यहां सबदर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: तिन जाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपर परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे जाओ साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधेर निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नोसदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: किछ पुन्नी सरदा सा पूरी,
0: गब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाये,
1: सो क्यों बिसरै जे भाव न भाने,
0: सो क्यों बिसरै जे किया जाने,
1: सो क्यों बिसरै जे सब कुछ दिया,
0: सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लखै,
1: सो क्यों बिसरै जे बिख ते काटै,
0: जनम जनम का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरै तत एह बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरै नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होत नास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों पेख दर्श सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: गुर प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बछल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा करत प्रतपाल,
1: आद पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो पा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सु

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: वाह ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जन आके तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरु पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: सुनत कमाप्त होत उदहार
1: आप तरह लोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिनकै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आज जंजाल विकार से रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक रवहि खेप हमारी
0: प्रभु की उस्तत करहो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: लहर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम इशनान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन के मुख भनी
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत के मन बसराम
0: ओट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊज तांकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: सबते

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दी संतोखी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे ते धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन कर

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मोर

0: पहला पर गड्डी लदी है पर ये साथ पर बेड़ी पाई है पर गड्डी है खास पर ये है जेते वर्ष बस पर ये जेते मास पर ये जेती आर जा पर ये जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदाल जेक होय तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैबज खुम चढ़ाई ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

दुख दारू सुख रोग पे जा सुख काम न होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जो

0: जोर गिरथ बाहो दुआपुरा तपे का सत गिरथ बाहो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर रथ बाहो
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप अब्द कर नीच।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी फलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल नवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग परनासी सोतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कोनेन्दा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र

गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राजा जारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे।

गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है

और कुछ भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? एहो मन शक्ति एहो मन सी हो, एहो मन पंच तत्व को जी। मन मन जाए ते मन ही भगवान हो जाता है, मन ना मने ते मन ही शैतान हो जाता है। फिर सारी मन को मनाण दे। मैं फिर दोहरावा, अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है मन नहीं मनता, सुनिया तो है मन नहीं मनता, वेख्या तो है मन नहीं मनता। मन नहीं मनता तो फिर नहीं है, नहीं। मन जिसनों मन लेंदा है ते मन जिसनों प्रभावित हो जाता है, मन उसे दी मांग करता है। बड़े ध्यान न सुनना, मन जिस दी मांग करता है मन बार बार उसे नो याद करता है। मन जिसनों याद करता है फिर मन उसे लिए समा करता है, वक्त करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। इसनों उल्टा के मैं दोहरावा, जिसनों मन मनदा नहीं ते जिसनों जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता मन उसनों याद भी नहीं करता। मन जिसनों याद नहीं करता उसकी प्राप्ति लई फिर मनुख को ना समा है ना संघर्ष है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी भी मनुख परिवार को निछावर कर सकता है, निरंकार वास्ते जिंदगी का दसवां भाग भी कोई नहीं। 24 घंटे एक पैर ते भी धन वास्ते खड़ा हो सकता है, धर्म वास्ते ते अमृत वेले का एक घंटा भी कोई नहीं। की होया झूम झूम के कीर्तन सुन ले। मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन जिसनों मनदा नहीं, मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता मन उसनों याद भी नहीं करता। मन जिसनों याद नहीं करता उन्हों हासिल कर ले ना समय ना संघर्ष है, लोड़ी नहीं, गल खत्म। कबीर ते किसी ने जरूर ऐसा प्रश्न किया है, उसी परमात्मा नु किवें जाने है, इन्ना महान परमात्मा और थोड़े को इतना महान ज्ञान, तुसी उस परमात्मा नु किवें जाने, केड़ी साधना की थी। कबीर कहंदे ने कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर। साडा मन हरी नु हरी करके मन गया, जैसे मन पुत्र नु पुत्र करके मन लेंदा, मित्र नु मित्र करके मन लेंदा, पत्नी नु पत्नी करके मन लेंदा, पति नु पति करके मन लेंदा, मां नु मां करके मन लेंदा, पिता नु पिता करके मन लेंदा। जिन्हों मन लेंदा है फिर उसकी याद भी चलती है, मंगता भी। और पुत्र नु याद करने लिए वाजा बजाने की लोड़ है, मित्र नु याद करने वास्ते तबला खड़काने की लोड़ है, पति नु याद करने वास्ते पत्नी नु याद करने वास्ते क्या कथा कहानियां की लोड़ है, फिलसफा घोटन की लोड़ है। ये तो याद आपे ही आऊंगी, पुत्र की याद आपे आऊंगी, मित्र की याद आपे आऊंगी, भरा की याद आपे आऊंगी, पति की याद आपे आउंदी है, पत्नी की याद आपे आउंदी है। रह गई गल परमात्मा नु याद करना, इनु याद करना होवे तबले बजाओ, वाजे खड़काओ, तबले खड़काओ, छैणे खड़काओ, गला फाड़ फाड़ के सुरदिश करके अलाप करो, ते दिमाग दिया नसा नु ढिला करके फिलसफा घोटो, कथा कहानियां करो, सेवा करो, पुन करो, दान करो, अमृत वेले उठो। मैं दावे नाल कहना सब कुछ कर दिया भी उदी याद नहीं आती, नहीं आती। जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता, मन उसनु याद नहीं करता, उदे लई कोई समा नहीं, उदे लई कोई वक्त। कबीर कहंदे मैं साधना पिया करदा कि मन नु मनाण दी, मन परमात्मा नु परमात्मा करके मन लवे, मन लवे। दिन रात यतन पिया करदा, पर मैं अवधि ज्ञात लई अर्ज करा, एक हकीकत है, मन नहीं मनदा उन्हां दा जो गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदरां च नहीं आउंदे, उन्हां दा मन भी नहीं मन

इको एक हरमन प्यारा ग्रोसरी स्टोर फ्रूटी कैना जिन्हां दे प्राइसेस होलसेल नालों भी घट हन। फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच जल्द ही खुलन जा रही है 29901 52 स्ट्रीट सरी। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 25 जून तो 1 जुलाई तक 4 पाउंड इंडिकेन चिट्टे छोले लवो 388 दा बैग 2 पाउंड प्लेन गुड़ 298 नूं अते रोमा टोमेटोज 98 सेंट्स नूं पाउंड। फ्रूटी कैना विशेस यू हैप्पी कैनेडा डे।

लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह दे जो है बनन खैर। बाकी विचारां कल तुहानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है, और वो प्रसाद है, उस दे क्रोपी नहीं है, उस दे सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसियां सजावां देंदा है, ऐसियां करणियां सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं, ये भी मैं अर्ज कर दें। ना जगत किसी नूं कोई सजा देंदा है, ना परमात्मा, साडे अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंदे, साडी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंदे, असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लैंदे हां। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है, अगर दुख देने वाला है तो फिर उन्हें रहीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें करीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें रहमान कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें प्रसाद कहने की लोड़ नहीं है, उन्हें कृपालु ते दयालु कहने की लोड़ नहीं है। वो ते इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है। ईरानी सूफी संत हाफिज कहते ने, सद सालाबा इम्तिहान गुनाह फाहम करद, ऐ खुदा 80 साल दी उम्र च इसने ए बोल रचे ने। कहिंदा है तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रह रखिया, 80 साल दा ते मैं हो गया, ते 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, ते जे बाकी होर तू मैनू 20 साल दी जिंदगी दित्ती ना, ते मैं गुनाह करांगा, पुन नहीं करने, पाप करने। सद सालाबा इम्तिहान गुनाह फाहम कर द, एक फकीर दे मुंह ये बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती दा फकीर सी। ईरान दे जितने फकीर हुए ने उना दे च एक चोटी दा फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा कीते, शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शमस तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह दे बहुत सारे चोटी दे सूफी संत उस जमीन ने पैदा कीते, उना दे च इक ए है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान दी मिट्टी ने ऋषि पैदा कीते, मुनि पैदा कीते, ज्ञानी पैदा कीते, भगत पैदा कीते, संत पैदा कीते, अवतार पैदा कीते, ईरान दी मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा कीते, सूफी संत पैदा कीते। उना दे च हाफिज दा अपना एक खास नाम है। कहिंदा सद सालाबा इम्तिहान गुनाह फाहम करद, ऐ खुदा जिस 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी ते मेरी गुनाहां च बतीत होई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा, अगर तू 100 साल दी मैनू जिंदगी दिती, क्यों? ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लेना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े दे च रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह, तोलांगा एक पलड़े च रखांगा 100 साल दे गुनाह, और दूजे पलड़े दे च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत, एक पल दी बख्शिश, एक पल दी कृपा। कहिंदा मेरा अनुभव कह रहा है तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है कि मेरे 100 साल दे गुनाह ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एवें मैं हिरदा बोझल पिया करदा, कुछ भी नहीं। कृष्णा रहमते शाहां का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूं। तू इतना बख्शन, इतना दयालु, ये फकीर कहिंदा मेरे अनुभव च आ गई ये गल, बाकी दे 20 साल मैं रहा ते पाप करांगा, पर मैं अर्ज करा जिस दे उते इतनी रहमत।

रहमत हो गई है कि जिसनों इतनी रहमत दिखाई दे रही है क्यों पाप करेगा, उस तो क्यों पाप हो जाएंगे। इसनों इंज भी लेना किधरे, इंज ना लेना कि चलो बड़ा कृपालू है, कल तो सारे ही अनर्थ कर दे, किधरे इंज पुठी गल ना ले लेना, सिलसिला उल्ट ना ले लेना। ये फकीर कहता है सद साला बा इम्तिहान गुनाह ख्वा हम कर दे, ऐ खुदा बीती जिंदगी मैं गुनाहां च बतीत कीती है जिहड़ी रहिंदी है, अगर तू मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया गुनाह करांगा, फिर 100 साल दे सारे गुनाह कट्ठे करके मैं एक पलड़े च रखांगा, तराजू पुराना एक पलड़े च रखा, ते दूजे पलड़े च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत। ऐ खुदा थोड़ी बहुत इबादत करके मैनू इतना पता चले है, तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वास्ते जब वाहेगुरु जपना होवे कीतियां या गलतियां दा अफसोस ना करियो, वाहेगुरु ही जपो, उसनु ही जपो। अगर कीतियां गलतियां दा अफसोस पैदा होया तो कई लोग ते इतने निराश होंदे ने, लै अमृत साडे हिस्से च किथे च, असी किथे नाम जप सकदे। ये पता है क्यों निराशा, कीतियां या गलतियां सामने आंदियां, पर ना रख पुरखा कीतियां या गलतियां नो इतना बख्शिंद है, इतना दयालु है, उदी एक पल दी रहमत सब कुछ धो देंदी। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले भाए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक चिनगारी लखां मन लड़कियां जो है साड़ के स्वाह कर देंदी है, उसकी पल भर दी रहमत एक निक्की जी चिनक तेरे करोड़ा पापां नू नाश कर देगी। तू एक चिनगारी ते पैदा कर अपने आप, तू इतना ते भरोसा कर उसते, ओ रहीम है, ओ रहमान है, ओ प्रसाद है, ओ करुणाकर है, ओ दया दा सागर है। इस वास्ते प्रसाद ते गल गुरु नानक ने खत्म कीती, एक ते शुरू कीती, प्रसाद ते समाप्त कीती। तू प्रसाद है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू दयालु है, तू कृपालु है। इसकी जड़ी वजाहत जिस ढंग नाल गुरबाणी च है, कुछ बुद्धि अनुसार मैं कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगा। अज इतने विचारां सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। रोज आप समा कढ़दे रहे, इत्थों दे सारे मुखी सज्जणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्नवाद, ते सेठी साहिबणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्नवाद। हर साल मैनूं याद करा देंदे ने इत्थे आवणा, और बणे होए प्रोग्राम नाल इत्थे 2 हफ्ते हाजरी भरनी है। सतगुर दी रहमत कीता होया वादा निभगे, सतगुर दी रहमत बख्शिश, कल फिर थोड़े चरण परसांगे। फिर मैं सारिआं दा धन्नवाद करदिआं होया इत्थे समाप्ति करदा, दास दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।